सम्मोहकौ सकलमोह विभञ्जकौ च तापत्रयोपशमनो हि दयाविशेषौ श्रीशिरडि साई चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्यप्रधान समता गुण सौम्यशील श्रीचन्द्रहास चिरवाञ्छित